0: 88.5 FM Community Program.
1: सामाजिक हिंदी कार्यक्रम दर्पण आकाशवाणी 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music and community announcements.
1: स्वागत है दर्पण हिंदी कार्यक्रम में. आप सुनेंगे समाचार, विचार, संगीत और सामाजिक सूचनाएं.
0: Radio 2000 98.5 FM, Multicultural Radio.

0: आज रविवार युगाब्द 5126, कलयुग विक्रम संवत 2083, ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी 10 मई 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। वाम दलों के समर्थन से बहुमत के करीब पहुंची टीवीके, माकपा और भाकपा ने किया बिना शर्त समर्थन का ऐलान। हिंदुत्व का चेहरा टीएमसी की रग रग जानने वाले वो पांच कारण जिसकी वजह से भाजपा ने शुभेंदु को चुना बंगाल का सीएम। दिल्ली पंजाब सहित 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू होगा एसआईआर, अगले हफ्ते हो सकता है ऐलान। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बिक्री में बड़ा उछाल, अप्रैल में ई कारों की बिक्री 75% बढ़ी। डीसी वर्सेज केकेआर, फिन एलन के शतक से बेबस हुई दिल्ली, कोलकाता ने घर में किया शर्मसार। अब सुनिए समाचार विस्तार से। वामपंथी दलों के समर्थन से टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय सरकार बनाने के करीब पहुंच गए हैं। माकपा और भाकपा ने जहां आधिकारिक तौर पर विजय को समर्थन देने का ऐलान किया है, वहीं वीसीके ने भी साथ जाने का संकेत दिया है। आईयूएमएल ने सरकार गठन की दिशा में उठाए जा रहे कदमों का समर्थन करने की बात कही है। भाजपा ने अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद शुभेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री चुना है, जिसमें ममता बनर्जी को दो बार हराना और टीएमसी की कार्यप्रणाली की गहरी समझ प्रमुख कारण है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक जीत के बाद पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी पहली सरकार का चेहरा घोषित किया। 294 सदस्यीय विधानसभा में 207 सीटें जीतकर भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया। बंगाल, केरल सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव से निपटने के बाद चुनाव आयोग अब दिल्ली, पंजाब व उत्तराखंड सहित बाकी बचे देश के 23 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष सघन पुनरीक्षण एसआरईआर का काम जल्द ही शुरू करेगा। चालू वित्त वर्ष के पहले महीने अप्रैल में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जिसमें ई कारों की बिक्री 75% और दोपहिया वाहनों की बिक्री 60.73% बढ़ी। जानकारों का कहना है कि कार खरीदारी के दौरान बैटरी को किराए पर देने की नई प्रणाली को अपनाने से कार व दोपहिया दोनों की बिक्री में तेजी से इजाफा हो रहा है। इसके अलावा चार्जिंग स्टेशन की संख्या बढ़ने से भी इसे प्रोत्साहन मिल रहा है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2026 में अपनी लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। उनके लिए सलामी बल्लेबाज फिन एलन ने शतक लगाया और टीम को जीत दिलाई। फिन एलन के रिकॉर्ड शतक के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 8 विकेट से जीत हासिल की। एलन ने दिल्ली के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की और नाबाद 100 रनों की पारी खेली। मुकाबले में दिल्ली की बल्लेबाजी पूरी तरह से फ्लॉप रही और पूरी टीम मात्र 142 रन ही बना सकी और इस लक्ष्य को कोलकाता ने आसानी से हासिल कर लिया। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,40,090 रुपये प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 94.44 रुपये और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 68.44 रुपये। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
1: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 FM 98.5 MHz पर। आज आपके साथ स्टूडियो में है ऋचा श्रीवास्तव, सुनील श्रीवास्तव और हमारे एंकर जो हैं सुगंधा। तो आज का जो टॉपिक है, हैप्पी मदर्स डे टू एवरीबॉडी, ऑल द मदर्स एंड दर्पण पहेली भी हम एक करेंगे, पहेली जिसमें हम एक पिक्चर जो है कृष्णावतार, उसका हम दो पासेज देंगे, एक पास में दो टिकट्स होंगे, और फिर हम कुछ संदेश आपको देंगे। एक तो पूज्य श्री ज्ञानंद जी महाराज जो अभी सिडनी में आए थे, और फिर हम बात करेंगे विकसित भारत चर्चा बाय श्री दुर्गा शंकर मिश्रा, वो भी अभी सिडनी में आए थे, जो और जो है गिरमिट दिवस बाय सरोजा दास, और मदर्स डे के सॉन्ग्स एंड लाइट इंटरटेनमेंट। इस प्रोग्राम को शुरू करने के पहले फिर आज का विचार ऋचा जी से।
0: नमस्कार श्रोताओं, मेरी ओर से भी आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं माँ का प्रेम जीवन की वो शक्ति है जो हर कठिनाई को आसान बना देती है। माँ वो रोशनी है जो खुद जलकर भी अपने बच्चों का जीवन उज्जवल बनाती है। तो माँ का हर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, इसीलिए उसको जननी कहते हैं, हर चीज़ के लिए, देश के लिए, धरती के लिए और व्यक्ति विशेष के लिए। तो आज मदर्स डे पे विशेष कार्यक्रम हम करेंगे दर्पण रेडियो पर, लेकिन आइए श्री पूज्य श्री ज्ञानानंद जी महाराज का संदेश सुनते हैं, क्योंकि पिछली बार इंटरव्यू नहीं हो पाया था किसी कारणवश, तो वो संदेश छोड़ के गए हैं हम सबके लिए। तो आइए सुनते हैं महाराज जी का संदेश।
2: नारायण नारायण नारायण नारायण। सिडनी में 3 दिन का प्रवास रहा, जिन 3 दिनों में 2 दिन गीता सत्संग रहा, 1 दिन किड्स और टीन्स के साथ कुछ बातचीत हुई, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हुए, कुल मिलाकर 3 दिन का ये जो प्रवास था यहाँ का सिडनी का, वास्तव में बहुत अच्छे ढंग से पूरा हुआ है। और इस प्रवास में सत्संग के रूप में जो बात कही गई विशेष रूप से यही कि जीवन को अच्छे से जीने के लिए भगवद गीता है। किसी मज़हब, रिलीजन, कास्ट, कलर, क्रीड, कंट्री के बाउंड्री में बंद नहीं है गीता। गीता सबके लिए है, जो भी चाहते हैं। मैं मजबूत मन से, अच्छी विल पावर के साथ, अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ एक अच्छा जीवन जीऊं, भगवद गीता उन सब के लिए एक बहुत लॉजिकल, प्रैक्टिकल और साइंटिफिक इंस्पायरेशन है, प्रेरणा है। भगवद गीता की इस प्रेरणा को भी सब तक पहुंचाने का प्रयास हुआ इन दिनों, कि जीवन में स्ट्रगल्स तो हैं, रहेंगे ही, हर जगह हैं, लेकिन स्ट्रगल्स को कैसे बिना घबराए स्ट्रगल्स को फेस करना है। स्ट्रगल आर पार्ट ऑफ लाइफ, बट टू फेस देम ब्रेवली, दिस इज आर्ट ऑफ लाइफ विच द गीता टीचेस अस। तो इसलिए भगवद गीता के साथ जीने का स्वभाव बनाएं और अपने जीवन को अच्छा बनाएं, और दूसरों के लिए भी अच्छी प्रेरणा बन जाएं। हम जहाँ हैं, जो हैं, अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाएं। कर्मण्येवाधिकार रस्ते, वो गीता का संदेश है। बच्चों से भी यही कहा गया, यूथ से भी यही कहा गया कि अपने प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में अपनी ड्यूटी अच्छी निभाओ, फ्यूचर को पहले से अपनी टेंशन, अपना स्ट्रेस ना बनाओ। प्रेजेंट अच्छा बन जाएगा तो फ्यूचर अपने आप अपनी केयर कर लेगा, उसकी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, उसकी प्लानिंग करो और प्लानिंग को अच्छे से एग्जीक्यूट करने के लिए पूरे सीरियस सिंसियर एफर्ट्स करो। और जब बच्चों को हमने कहा कि एग्ज़ाम हो या कोई भी ऐसी स्थिति हो तो नो फियर नो टियर जस्ट चीयर, और बच्चों को जब एक्टिव फिजिकली एक्टिव मेंटली अलर्ट और इंटेलेक्चुअली अवेयर 3A इस ढंग के संदेश दिए गए तो निश्चित बच्चों में भी अच्छी प्रेरणा बने। तो ये 3 दिन का जो प्रवास रहा कुछ अच्छे प्रैक्टिकल इंस्पिरेशंस के साथ रहा, सबने बड़े अच्छे से उसको सुना समझा भी, और इस समय ये संदेश जो है दर्पण रेडियो के माध्यम से दिया जा रहा है। दर्पण रेडियो के सभी लिसनर्स के लिए, श्रोताओं के लिए और पूरे दर्पण परिवार के लिए, ऋचा और पूरे दर्पण परिवार के लिए बहुत बहुत ब्लेसिंग, बेस्ट विशेष, हार्दिक शुभकामना। जय श्री कृष्ण।

0: दर्पण रेडियो सुन रहे सभी श्रोतागण को प्यार भरी नमस्कार। क्या आप अपने प्रियजनों के लिए भरोसेमंद और स्नेहपूर्ण देखभाल की तलाश में हैं? श्री ओम केयर में हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए सम्मान, गरिमा और घर जैसा माहौल देते हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं इन होम केयर, डिसेबिलिटी केयर और डेमेंशिया व अल्जाइमर सपोर्ट, साथ ही स्पेशल सपोर्ट, एडवाइजरी सर्विसेज और संस्कृति व भाषा के अनुसार विशेष देखभाल। हम 24/7 असिस्टेड लिविंग, रजिस्टर्ड नर्सिंग, रेस्पाइट केयर और हेल्दी एजिंग एक्टिविटीज भी प्रदान करते हैं। हम माई एज केयर, NDIS और प्राइवेट केयर विकल्पों के माध्यम से आपकी पूर्ण सहायता करते हैं। श्री ओम केयर, जहां देखभाल परिवार जैसी लगती है। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें 1300-908-681 या फिर वेबसाइट विजिट करें shriomk.org.au। धन्यवाद।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर का संदेश।
2: तो श्रोताओं, आज मदर्स डे है और बहुत खुशी खुशी सारे मदर्स मना रहे हैं मदर्स डे पे। तो आइए एक प्यारा सा पुराना गीत सुनते हैं और हमारे यतिंदर जी ने क्या अच्छी बात लिखी है कि भगवान हर एक के पास साक्षात नहीं हो सकते हैं, इसलिए माँ को भेजा है।

0: Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश.
0: Every Sunday, listen to the Hindi show 98.5 FM Radio 2000.
2: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक.
3: लंबी फिल्म कृष्ण अवतारम पार्ट वन, ये फिल्म आउट ऑफ सिलेबस आ गई है. 2026 की सबसे बड़ी फिल्म बन सकती है और उसे देखकर कितने करोड़ की कमाई होगी ये सब छोटी बातें लगेंगी. सबसे बड़ा मैसेज इस मूवी का कि फिल्म बनाने में भाव लगता है, करोड़ों लगे हो या ना लगे हो. और जैसे कि आप जानते हैं मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से, और यहाँ उठते ही हर इंसान सबसे पहले गुड मॉर्निंग नहीं जय श्री कृष्ण कहता है एक दूसरे को. इस प्रदेश में खूब चलेगी ये फिल्म और पूरे भारतवर्ष में. पर कन्हैया जी पर फिल्म बनाना अपने आप में हिम्मत चाहिए इसके लिए. हर भक्त के लिए अगर कृष्ण जी देखे तो एक इमोशन, एक एहसास है. पहली ही शॉट से दिल को छू लेगी ये फिल्म जब श्री कृष्ण शरीर का त्याग कर देते हैं. ये दिखा दिया है हार्दिक गजन ने, बनाने वाले ने, कि वो कमाल के स्टोरी टेलर हैं. लेकिन टेलीविजन तक सीमित नहीं है, इन्होंने ही देवों के देव महादेव ये सीरियल को डायरेक्ट किया है और मैंने तो खूब देखा है उसे. और अब बिग स्क्रीन पर लाए हैं श्री कृष्ण को, उनकी कहानी को. श्री कृष्ण का सफर वृंदावन से द्वारका से महाभारत की शुरुआत जिसमें वो हस्तिनापुर चले जाते हैं, से कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद वो द्वारका जब वापस आते हैं, राधा सत्यभामा और रुक्मिणी तीनों के इमोशंस में घिरे रहेंगे. कृष्ण के साथ एक एक का रिश्ता जिन्हें नहीं पता उन्हें भी जानने को मिलेगा सत्यभामा कौन थी. और सबसे अहम भूमिका उन्हीं की है क्योंकि कृष्ण के लिए उनमें प्रेम इतना ज्यादा था. कृष्ण जब रुक्मिणी जी से मिलते हैं और सत्यभामा में दिखने वाली ईर्ष्या का भाव, वृंदावन में राधा के साथ उनकी कहानियां, उससे जुड़ा हुआ ईर्ष्या का भाव, कृष्ण अवतारम, ये अपने आप में फिल्म स्टैंड आउट करती है क्योंकि कृष्ण की कहानी, कृष्ण नहीं सत्यभामा की नजर और नजरिए से. सत्यभामा जैसे कृष्ण जी को समझने की कोशिश में हर देखने वाला उनकी नजर से कृष्ण को समझने लगता है. कितना कठिन होता है कि जिससे आप प्यार करते हैं वो अगर पूरी तरह से आपका ना हो सके. भक्त है श्री कृष्ण के तो फर्स्ट हाफ में खो जाएंगे. एंड ऑनेस्टली एज अ फिल्म अगर देखूं तो सेकंड हाफ थोड़ा सा लंबा, थोड़ा सा स्ट्रेच लगता है. श्री कृष्ण यानी कि सिद्धार्थ गुप्ता जिन्होंने ये रोल प्ले किया है, उफ, उनको देखते ही कृष्ण की गहराई और कृष्ण जितने शांत वो महसूस कर पाएंगे, बहुत ही डिवाइन लुक है उनका. और सिद्धार्थ गुप्ता पर श्री कृष्ण के विशेष आशीर्वाद तो हैं क्योंकि कन्हैया वाला मैग्नेटिक पुल ये महसूस कर पाएंगे. उनके चेहरे पर इतने ज्यादा एक्सप्रेशंस की सब बयां कर जाते हैं. डायलॉग्स को इतना सुंदर लिखा गया है और म्यूजिकली पूरी फिल्म को जैसे सजाया गया है. प्रोडक्शन डिजाइन और कॉस्ट्यूम, बजट को ध्यान में रखकर जितना हो सकता था सब किया. द्वारका के जो शॉट्स दिखाए हैं टोटली ग्रैंड, कुछ विजुअल्स इतने कमाल हैं कि विश्वास नहीं आता कि इतने करोड़ नहीं लगे हैं इन्हें क्रिएट करने में. महल के अंदर के शॉट्स सबसे खूबसूरत दिखाई पड़ते हैं. लगता है कि भगवान कहाँ रहते होंगे, शायद ऐसी जगह में रहते होंगे. महाभारत को पूरी तरह से दिखाया नहीं गया, शायद तक सेकंड पार्ट में दिखाए. लेकिन इतने कलर्स बिग स्क्रीन पर बिखेरे हैं, रियल और वीएफएक्स का कॉम्बिनेशन इतना सुंदरता से प्रेजेंट किया है. फिल्म के किसी भी शॉट को फ्रेम करके मोबाइल का वॉलपेपर बन सकता है और साउंड इस फिल्म का रूह तक पहुंचेगा, ऐसा म्यूजिकल एल्बम. विजुअली बहुत अच्छी लगेगी लेकिन कुछ फ्रेम्स ऐसे भी हैं जिनको देखकर एक्सपेक्टेशन टूट सकती है. द्वारका के लॉन्ग शॉट्स, वृंदावन में राधा कृष्ण को साथ दिखाया या
4: तो. श्रोताओं, ये जो है बड़ी एक्साइटिंग मूवी लग रही है कृष्णा अवतार. तो श्रोताओं, आपको बता दें कि सुगंधा जी इसी मूवी से जुड़ा एक बहुत एक्साइटिंग न्यूज़ आपके लिए लेके आई हैं. तो आइए सुनते हैं कि सुगंधा हमें क्या संदेश दे रही हैं.
5: नमस्ते श्रोताओं, मैं सुगंधा कांत आपके लिए पहली लेके आई हूँ मदर्स डे के लिए, जिसमें हम दो प्राइज देने वाले हैं, जिसमें दो मूवी के पास हैं और एक मूवी के पास में दो टिकट हैं कृष्ण अवतार मूवी के लिए. अपने अपने मदर्स डे के मैसेज डालिए दर्पण रेडियो के फोरम पे और हम सिलेक्ट करेंगे दो विनर्स.
4: बहुत अच्छी बात. थोड़ा सा इसको और मैं बता दूं कि आपने कहा दो मूवी के, तो मूवी एक ही है कृष्णा अवतार,

0: और एक मूवी के दो पास हम देंगे और एक पास में दो टिकट होंगे, सही है सुनील जी?
1: बिल्कुल सही।
0: तो आप अपने मैसेजेस जो हैं वो दर्पण फोरम में डालते रहें, मदर्स डे से रिलेटेड मैसेज डालेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और सारे लिसनर्स जो हैं मैसेज डाल रहे हैं मदर्स डे का, उनको हम एक ड्रॉ में डालेंगे और फिर उसमें से दो व्यक्तियों के नाम निकालेंगे और एक एक पास उन्हें प्राइज़ में देंगे। तो चलिए सुनते हैं अगला गीत या मैसेज सुना रहे हैं सुनील
2: श्रोताओं,
0: जी।
2: आज दर्पण रेडियो पर आज हम एक बहुत ख़ास इंटरव्यू लेकर आए हैं। एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति से आपका परिचय कराना चाहते हैं, तो उसके पहले कुछ भूमिका और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। श्रोताओं, कुछ लोग केवल एक क्षेत्र में प्रतिभाशाली होते हैं, जबकि कुछ लोग अनेक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का अद्भुत परिचय देते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आपका परिचय करा रहे हैं, श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। दुर्गा शंकर मिश्र जी, जिन्हें शॉर्ट में हम DSG भी कहते हैं, DSG ने वर्ष 1983 में IIT से इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त की तथा वर्ष 1984 बैच में प्रतिष्ठित IAS अधिकारी बने। अपने प्रशासनिक कौशल, दूरदर्शी नेतृत्व और बहुमुखी प्रतिभा से उन्होंने समाज एवं राष्ट्र की सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। श्रोताओं, इनकी जितनी प्रतिभा है और इन्होंने जितना काम किया है उसके लिए एक रेडियो जो है वो बहुत कम है, लेकिन कुछ जो है हाइलाइट्स आपको बताना चाहूँगी कि 2021 में उत्तर प्रदेश, जो कि बहुत सबसे बड़ी जनसंख्या का क्षेत्र है, लगभग 25 करोड़ वहाँ की जनसंख्या है, उस राज्य में सिविल सेवा के सर्वोच्च अधिकारी मुख्य सचिव 2.5 साल से भी ज़्यादा रहे। भारत सरकार में मोदी जी ने 2014 में ट्रांसफॉर्मेशन कायाकल्प किया भारत का, और उसकी शुरुआत हुई। उस समय DSG ने भारत सरकार में अर्बन डेवलपमेंट अधिकारी के रूप में ये कार्यरत रहे और बहुत ही उसमें इनका योगदान रहा। एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर ये कार्यरत रहे। 4.5 साल तक भारत सरकार में सर्वोच्च पद हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव के पद पर कार्यरत रहे, और इस तरह से अनगिनत इनकी सेवाएं हैं और अनगिनत कार्य हैं इनके। तो बिना विलंब किए हुए आइए हम आपको मिलाते हैं श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी से। दुर्गा शंकर मिश्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्पण हिंदी रेडियो में, नमस्कार।
3: नमस्कार ऋचा जी, धन्यवाद।
2: आप सबसे पहले अपने बारे में हमारे श्रोताओं को अपने मुख से बताइए कि भारत में आप कहाँ से हैं, और जर्नी तो आपकी बहुत ही उत्तम है और बहुत लंबी है, लेकिन सिडनी में आप कब आना हुआ? मेरे ख्याल से आप तीसरी बार सिडनी पधार रहे हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
2: तो आप अपनी सिडनी की यात्रा भी थोड़ी बताइए और भारत के बारे में बताइए कि आप कहाँ से जो है वो भारत में बिलोंग करते हैं।
3: ऋचा जी, मेरा जन्म उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव है पहाड़ीपुर
2: जी,
3: वहाँ मैं पैदा हुआ
2: जी,
3: एक साधारण से परिवार में
2: जी।
3: मेरे पिताजी विकास खंड में क्लर्कल सेवा में हुआ करते थे और रिटायर किए 1981 में प्रधान लिपिक के पद से, जो हेड क्लर्क होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस के।
2: अच्छा।
3: वो बहुत कम पढ़े लिखे, कक्षा 7 तक पढ़े थे। मेरी माँ तो अनपढ़ थी, निरक्षर।
2: अच्छा।
3: थी। गांव में पैदा होने के बाद वहाँ पे गांव का जो प्राइमरी स्कूल है वहाँ से मैंने पढ़ाई अपनी शुरू की, कक्षा 5 वहीं से पास किया
2: जी।
3: उसके बाद गांव से हमारे करीब 1 किलोमीटर दूरी पर एक गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज है, वहाँ से मैंने कक्षा 6 और 7 की पढ़ाई की
2: जी।
3: लेकिन भगवान ने कुछ और ही रास्ता मेरे लिए बना रखा था
2: जी।
3: मेरे पिताजी की मुलाकात एक बार बलिया में पोस्टेड थे, बलिया से गांव आ रहे थे तो रास्ते में एक बच्चे से मुलाकात हुई, बहुत स्मार्ट बच्चा था
2: जी,
3: नैनीताल में पढ़ता था। उससे जब जानकारी पिताजी ने की, उनको थोड़ा उत्सुकता हुआ कि कैसे बच्चा, मैंने गांव का बच्चा वहां कैसे पढ़ रहा। उसने बताया कि एक भारत सरकार की एक छात्रवृत्ति योजना है जो कि जो सामान्य परिवार के बच्चे हैं
0: जी,
3: जिनके माँ बाप की आय बहुत कम है
0: जी,
3: उनको सहायता करने के लिए
0: जी।
3: बस उसके बाद क्या था, उन्होंने पिताजी से जानकारी मिली, उन्होंने मुझे ये परीक्षा इम्तहान दिलाया और भगवान का बड़ा आशीर्वाद था कि एक उत्तर प्रदेश लेवल की जो परीक्षा हुई उसमें मैं उत्तर प्रदेश से पहला स्थान आ गया मेरा
0: जी।
3: और उसके बाद जो भारतवर्ष की परीक्षा हुई उसमें मैं 5वां स्थान आया।
0: अरे,
3: और मैं सीधे गांव से निकल करके, बीच में बाबूजी मुझे अपने साथ बलिया ले गए थे करीब 6-7 महीने के लिए, वहाँ एक इंटर कॉलेज में एडमिशन करा दिए थे
0: जी।
3: लेकिन फिर उसके बाद मैं सीधे विकास विद्यालय रांची पहुँच गया।
0: अच्छा,
3: अब ये तो विद्यालय एक प्रकार से पहले जो गुरुकुल होता था
0: जी,
3: उस प्रकार से एक बहुत ही ज़्यादा सनातन संस्कृति में बुना हुआ
0: जी,
3: वहाँ पे इतना अच्छा वातावरण था, लेकिन इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम एजुकेशन
0: जी,
3: तो पढ़ाई लिखाई सब कुछ तो आपकी अंग्रेजी में होती थी, लेकिन आप बिल्कुल सनातन संस्कृति से जुड़े हुए थे
0: जी।
3: वहाँ से मुझे पढ़ने का मौका मिला और उसके बाद जब मैं वहाँ से हायर सेकेंडरी पास किया
0: जी,
3: तो हायर सेकेंडरी पास करने के बाद मेरे पास ऑप्शन थे कि क्या क्या आप कहाँ जा सकते हैं, तो मैंने IIT की परीक्षा दी, नेशनल साइंस टैलेंट सर्च की परीक्षा दी, वहाँ भी हुआ, IIT मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं IIT कानपुर पहुँच गया
0: जी।
3: IIT कानपुर से मैं 1983 में BTEC पास किया।
0: अच्छा,
3: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में।
0: तो IAS में कैसे झुकाव हुआ?
3: देखिए, इसकी भी बड़ी
0: इच्छा थी,
3: किसी की इच्छा नहीं। देखिए, मेरे पिताजी तो बहुत खुले दिमाग के थे, वो कहते थे कि तुम श्रेष्ठ बनो।
0: अच्छा,
3: जो भी करो वहाँ पे, जहाँ जाओ वहाँ अच्छा से अच्छा
0: अपना बेस्ट दें।
3: उनका कहना था कि देखो, मैंने बचपन में वो हमारे लिए गीता प्रेस की किताबें लाए करते थे, बहुत सारी किताबें, और बहुत सारी किताबें जो मुफ्त में रशियन सरकार की तरफ से आती थी, मैं बहुत पढ़ता था बचपन में। इनफैक्ट आपको आश्चर्य होगा सुनकर के, मैं 10 साल की उम्र में गाँव में एक लाइब्रेरी बना लिया था अपने बड़ी अम्मा के नाम पर जो नहीं रही थी।
0: अच्छा।
3: उस लाइब्रेरी से मैं गाँव के लोगों को, जो बाबूजी किताबें लाते थे, उन किताबों को लोगों को इशू करता था, 15 दिन पे वापस भी लेता था।
0: और मैं किस उम्र की बात रही होगी
3: ये, मैं 10-10.5 साल की उम्र में
0: बताइए,
3: और मैं खूब पढ़ाई करता था
0: उस उम्र में, ये सोच की खुद तो पढ़े ही
3: दूसरों को,
0: समाज को भी जो है विकसित करें।
3: बिल्कुल, ये तो पता नहीं भगवान की ऐसी इच्छा थी,
0: यहीं से शुरुआत हुई है शायद आपके जो है।
3: बाबूजी का जो है ये था कि आप कुछ भी करो
0: जी।
3: अब मेरे पास ऑप्शन था कि बहुत सारे ऑप्शन थे
0: जी,
3: और IIT में मेरा एक प्रकार से कीर्तिमान है आज तक
0: जी।
3: वहां का मैं जब पास आउट किया तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 10.0 CPI के साथ मेरा फर्स्ट रैंक थी।
0: अच्छा,
3: पूरे बैच में मेरी पहली रैंक थी।
0: वाव।
3: मैं BTEC का प्रोजेक्ट था, उसमें बेस्ट BTEC प्रोजेक्ट मेरा रहा, मैं और श्रीकांत श्रीवास्तव दोनों मिलकर के, और मैं अपने बैच का बेस्ट ऑलराउंडर भी रहा।
0: अच्छा,
3: मैंने बहुत कम होता है कि जो लोग पढ़ने वाले होते हैं वो ऑलराउंड नहीं सब चीज़ में भाग लेते हैं।
0: हाँ।
3: जब मैं सब चीज़ भाग लेता था, वो जो पिताजी ने जो एक मन में भाव बना दिया था ना, श्रेष्ठता का भाव, कि आप जो भी करो उसको बहुत अच्छे से करो,
0: बेस्ट करो,
3: तो मैं जो भी करता था सब अच्छे से करता था। तो उसको लेकर के मैं जब अपने कुछ प्रोफेसरों से, ऑब्वियसली कन्फ्यूजन में था बहुत ज़्यादा कि मैं करूँ क्या
0: जी,
3: बहुत प्रोफेसर से मिला और सब कहते थे कि ऑब्वियसली तुम अमेरिका जाओ।
0: अच्छा,
3: क्योंकि हमारे ज़माने में, आज की डेट में तो बच्चों को, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा माहौल बना दिया कि देश में इनोवेशन का, स्टार्टअप्स का ऐसा माहौल बन गया कि बच्चे बाहर नहीं जाते
0: जी।
3: लेकिन जब हम पढ़ते थे तो IIT में पढ़कर के बच्चे सब मोस्टली अमेरिका चले जाते थे
0: जी, जी, जी।
3: और मेरे जैसे बैकग्राउंड के बच्चों के लिए तो हमें तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप और सब कुछ मिल जाता, तो सारे प्रोफेसर यही कहते थे तुम्हें तो अमेरिका जाना चाहिए
0: जी।
3: लेकिन एक प्रोफेसर वी राजा रमन थे।
0: अच्छा,
3: कंप्यूटर साइंस के
0: जी।
3: तो मुझे संतुष्टि होती नहीं थी जब उनके पास मैं पहुंचा, तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम आखिर चाहते क्या हो
0: जी।
3: मैंने कहा सर दो चीज़ चाहता हूँ, कि मैं तो देश के प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ कि अगर देश ने मुझे वो स्कॉलरशिप नहीं दी होती तो मैं गांव में अधिक से अधिक होता तो एक टीचर बन जाता किसी स्कूल में
0: जी,
3: या लेखपाल या ग्राम सेवक बन जाता, उसके बियॉन्ड में नहीं जा सकता था, वो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती
0: जी।
3: लेकिन ऐसा मौका भगवान ने दिया और मैं आज IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ करके आज इस स्टेज पे पहुंचा हूँ, तो मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ उस कृतज्ञता के भाव से
0: जी।
3: दूसरा, मेरा परिवार बहुत साधारण परिवार है
0: जी,
3: मैं चाहता हूँ हमारे परिवार के लोग भी आगे बढ़े, उनको मैं सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो उन्होंने जो मुझे राय दी, मैंने निर्णय लिया कि मैं विदेश नहीं जाऊँगा।
0: अच्छा,
3: मैं अपने देश में रहूँगा, और अपने देश में मुझे लगा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से अच्छी कोई सेवा नहीं है
0: जी,
3: इसलिए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं भारतीय प्रशासनिक सेवा का परीक्षा दूंगा उस परीक्षा को देने के पहले इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की दो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, मैंने दोनों फॉर्म भरे।
0: क्या बात है।
3: मैंने लोगों से कहा भी कि देखो मैं उसको अपनी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ ताकि मैं अधिक से अधिक इम्तहान दे सकूँ, एक प्रैक्टिस कर चुकूँ। मैं कोचिंग तो मुझे, एक तो मेरा आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि जिससे मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकता था, और दूसरा वहाँ कानपुर में उपलब्ध भी नहीं थी
0: जी।
3: तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन को दिया, जिसका परीक्षा थोड़ा पहले होता था, महीने दो महीने पहले। यूपीएससी लेती थी, दो दो इंटरव्यू भी दिया, उसके बाद आईएएस की परीक्षा दिया। और आपको जानकर के खुशी होगी कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पूरे देश में प्रथम स्थान मेरे मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स टेली कम्युनिकेशन में दूसरा स्थान मेरा आया, और आईएएस में भी मेरा 19वां स्थान आया, जिसकी वजह से मुझे अपना खुद का कैडर, उत्तर प्रदेश कैडर मिल गया।
0: बताइए, तो इस तरह से देश सेवा आपकी शुरू हुई। अभी तो अभी और बातें हमें करनी है आपके अचीवमेंट्स के बारे में, लेकिन सिडनी की यात्रा की भी थोड़ी बात बीच में डालते हैं कि सिडनी में आपका कितनी बार और कैसे आना हुआ।
3: सिडनी में देखिए, पहले बार मैं ऑसेड ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की एक स्कॉलरशिप है, ये स्कॉलरशिप मुझे 1999 में मिली
0: जी।
3: मुझे करीब $1200 मुझे ख्याल है, $1200 या $1250 हमें मिला करता था, स्कॉलरशिप मिलती थी, बच्चों का फीस वगैरह माफ़ था।
0: अच्छा।
3: तो हमारे बच्चे भी मेरे साथ आए, तो 1999 to 2000 मिलेनियम ईयर था।
0: अच्छा।
3: वो जो सिडनी ओपेरा हाउस और हार्बर के ऊपर जो इतना बड़ा खूबसूरत, दुनिया का सबसे बड़ा
0: शो था,
3: उस समय यहाँ पे था
0: जी।
3: इनफैक्ट ओलंपिक भी उसके थोड़े ही दिन के बाद हुआ, उसकी तैयारियों को मुझे देखने का मौका मिला
0: जी।
3: तो 1999-2000 में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न सिडनी कैम्बल टाउन में, यहाँ पे मैं MBA इंटरनेशनल बिजनेस करने के लिए आया, और फिर तमाम सारे हमारे IIT के इतने सारे दोस्त मित्र हो गए
0: जी,
3: सबके साथ एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी फीलिंग हमारी जो है, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। उसके बाद मैं दोबारा आया, मुझे यूनिवर्सिटी ने डीन से स्कॉलर के रूप में सेलेक्ट किया
0: जी।
3: तो वो स्कॉलर मैंने डीन से स्कॉलर का अवार्ड लेने के लिए मैं खास तौर से आया और अपनी डिग्री लेने आया। तीसरी बार एक एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों की ट्रेनिंग के लिए मैं मेलबर्न और सिडनी
0: जी
3: यहाँ पे एक हफ्ते के टूर पे आया।
0: तो ये फोर्थ
3: और ये चौथी मेरी विजिट है। हमारे बहुत एक मित्र है उपाध्याय जी, प्रदीप उपाध्याय जी और पुष्पा
0: उपाध्याय जी, हमारे दर्पण टीम के
3: पुष्पा जी, दोनों हमारे IIT कानपुर के हैं, बड़े गहरे मित्र हैं। उनकी बिटिया की शादी थी और उसका रिसेप्शन है, अभी कल रिसेप्शन है, उसी के लिए मैं आया हूँ।
0: और जैसा कि मैंने बताया, उपाध्याय जी दर्पण टीम के भी ब्रॉडकास्टिंग टीम में है, और आपके IIT के एक और सहयोगी सुनील श्रीवास्तव जी जो हैं वो भी जो है दर्पण ब्रॉडकास्टिंग टीम में है। तो आपने एक छोटा IIT यहाँ भी बना दिया है आपको और हम लोग उसका आनंद उठाते हैं, और आपके बारे में सुनकर हमें इतना गर्व होता है, तो आपके जो है मित्रगण हैं उन्हें कितना होता होगा। और हम समझते हैं कि पूरे भारत में जितने भी लोग बसे हैं, आपसे जुड़े हैं और आपकी सेवाओं का लाभ उठाते हैं, उन्हें भी बहुत गर्व महसूस होता होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके सिडनी विजिट के लिए। तो सिडनी में क्या कार्यक्रम, क्या क्या आप देखे और क्या क्या घूमे इस बार?
3: इस बार मैं देखे, जब मैं पढ़ता था तो मैं उस समय छुट्टियाँ कम ही मिलती थी
0: जी जी,
3: तब मैं एक बार गोल्ड कोस्ट के तरफ गया, ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट तरफ गया, क्योंकि मेलबर्न और तस्मानिया गया, एक बार मैं न्यूजीलैंड गया। मेरी बड़ी इच्छा थी फिजी जाने की।
0: अच्छा।
3: लेकिन उसमें समय नहीं मिला।
0: हाँ।
3: प्लस पैसे भी उतने नहीं थे हमारे पास
0: जी।
3: इस बार मैं फिजी 4 दिन के लिए गया, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैं 3 दिन में नंदी में रहा और 1 दिन के लिए सुवा में रहा, बहुत अच्छा लगा।
0: वहाँ जो भारत है,
3: वहाँ के हाई कमिश्नर साहब जो हमारे साथ काम कर चुके थे, जब मैं हाउसिंग अर्बन अफेयर्स का सेक्रेटरी था तो वो हमारे साथ डायरेक्टर हुआ करते थे, बहुत फैंटास्टिक अधिकारी, बहुत बढ़िया अधिकारी
0: जी।
3: तो फिजी 4 दिन के लिए जाने का मौका मिला। और दूसरा केन्स भी मेरे जाने की बहुत इच्छा थी
0: जी,
3: तभी मैं कल ही केन्स से लौटा हूँ अपनी पत्नी के साथ और बच्चों के साथ में गया था केन्स।
0: अच्छा,
3: गया था। तो केन्स में वहाँ पे जाकर के ग्रेट बैरियर रीफ का एक अनोखा अनुभव हमें मिला।
0: और फिजी में कोई खास अनुभव हुआ हो आपको?
3: फिजी में एक तो वहाँ पे भारतीयों की संख्या काफ़ी है, काफ़ी सारे लोगों से मैं, इनफैक्ट भारतीय समाज के लोगों से मेरा हाई कमीशन में इंटरेक्शन भी हुआ
0: जी।
3: उन लोगों से बात सुनकर उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया वहाँ के लिए
0: जी।
3: तो और वहाँ की जो जलवायु है बहुत अच्छी है, इतना हरा भरा, इतना खूबसूरत। मैं 3-3 आइलैंड पे एक मैं टूर लिया था, जो कि वहाँ पे फेरी के माध्यम से जाकर के वहाँ स्नॉर्कलिंग करने के लिए
0: जी,
3: तो बहुत अच्छा अनुभव रहा फिजी का, मुझे अच्छा लगा, और ख़ासतौर से अपने भारतीयों का जो कि वहाँ गए और संस्कृति में मिल करके वहाँ के लिए इतना सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं
0: और अभी भी वो संस्कृति को आगे लेके चल रहे हैं,
3: बिल्कुल उसको लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जी जी,
3: बहुत अच्छा लगा।
0: तो वो तो बाकी देखने हैं। और ग्रेट बैरियर रीफ का बताइए अनुभव कैसा लगा आपको?
3: कमाल की चीज़ है ये पूरे दिन भर का हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ जो गए थे।
0: तो ये बताइए कि आपको अब अफसोस नहीं होता है कि आप विदेश क्यों नहीं आए और भारत में ही रुक गए देश सेवा के लिए?
3: बिल्कुल नहीं, देखिए मुझे इतना अच्छा लगता है अपने देश में रह करके जो मुझे काम करने का मौका मिला।
0: ये बात तो सही है,
3: चाहे वो एक गांव की को बेहतर बनाने के लिए, शहर को आप सोचो कि जब मैं अर्बन सेक्रेटरी था
0: जी
3: देश का, तो मैं 5-5-6 अर्बन मिशंस,
0: अच्छा
3: स्वच्छ भारत मिशन का आपने नाम सुना होगा
0: जी,
3: जिसमें शहरों की बिल्कुल इनको कायाकल्प कर दिया, इतनी ज़्यादा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि जो उनका जो सोच थी स्वच्छ भारत की, कि जब हम अपने प्रधान अपने महात्मा गांधी जी का 150वीं जयंती मना रहे होंगे तो देश को स्वच्छ कर देंगे
0: जी,
3: उसके लिए इतनी मेहनत करनी और उसको देश को सुधार करने के लिए
0: जी,
3: प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जी का जो एक सोच थी कि हर कोई को अपना आवास दे दे
0: जी,
3: 1 करोड़ से ज़्यादा आवास बनाना, हमारी जो है बस स्मार्ट सिटी मिशन, जो हर शहरों को स्मार्ट बना देना, एक स्मार्टनेस का एक नया एक विकल्प इसको तैयार कर देना
0: जी,
3: अर्बन लाइवलीहुड मिशन जिसमें गरीबों को जो गांव से शहर में आ रहे हैं उनको स्किलिंग करना, उनको रोजगार के साधन देना, ये सब चीज़ का कार्यक्रम करना, तो ऐसे या पीएम स्वनिधि जो कि हमारे स्ट्रीट वेंडर्स है, रेहड़ी पटरी वाले जो हमारे भाई बहन लोग हैं जो छोटी छोटी चीज बेच करके अपनी जिंदगी गुजारते, उनके जिंदगी को सुधार करना
0: जी।
3: अब इतने सारे मौके पूरे देश में मेट्रो, मुझे लोग जानते हैं कि मेट्रो को मैंने कैसे जो है केवल 5 शहर की जो बढ़ा करके आज 32 शहर में मेट्रो है, जहाँ करीब मुश्किल से 20-1 लाख लोग मेट्रो पे चलते थे, आज 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मेट्रो पे डेली चलते हिंदुस्तान में, आज हम आत्मनिर्भर हो गए हैं मेट्रो में, काफ़ी मात्रा आत्मनिर्भर हो गए, 1000 किलोमीटर से ज़्यादा मेट्रो आज की डेट में हिंदुस्तान में चल रही है और 1000 किलोमीटर पे उस पर काम चल रहा है
0: जी।
3: आज RRTS रीजनल रैपिड रेल जो है दिल्ली से मेरठ के बीच चली, ये सब कुछ करने का जो मुझे मौका मिला, जो एक खुशी मिली, ये तो मैंने आपको वो बता रहा हूँ जो कि मैं लास्ट में किया
0: जी।
3: जब SDM थे, ADM थे, DM थे, सेक्रेटरी थे, हर लेवल पे लोगों को जिंदगी, जब किसी को खुशहाल देखते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, बहुत प्रसन्नता होती
0: जी,
3: है
0: जी। बहुत अच्छी बात। इन सब प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा हम संक्षेप में बात करते जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस लौटते हैं इंटरव्यू पे। श्रोताओं बने रहिएगा दर्पण हिंदी रेडियो के साथ।

0: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
1: आप हमारी सामाजिक सूचनाएं और स्पॉन्सर्स के संदेश हमारी वेबसाइट dapanradio.org.au पर देख सकते हैं।

0: Curry Master's Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमार स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश
2: कर रहे हैं श्री डीएस मिश्रा जी से जो भारत से सिडनी पधारे हैं और उनसे आपको मिलाना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत ही प्रतिभाशाली हैं और इन्होंने भारत सरकार में रहकर भारतीय जनसंख्या के लिए भारतीय समुदाय के लिए बहुत सारे काम किए हैं और उन जिससे उनका विकास तो हुआ ही है और देश का भी विकास हुआ है. तो आइए हम बातचीत करते हैं डीएस जी से. सो डीएस, ये पहले पूछना चाहेंगे कि कानपुर आईआईटी में आपकी शुरुआत हुई पढ़ाई की और वहीं आप विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी रहे. क्या आपने अपने कॉलेज के अनुभव से शहर को कोई लाभ दिया, इस बारे में थोड़ा हमें बताएं.
3: देखिए ऋचा जी, मैं जब मेरी अप्रैल 1998 में
2: जी
3: कानपुर के विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में मेरी पोस्टिंग हुई
2: जी,
3: तो मेरे मन में तुरंत एक बात आई
2: जी
3: कि जब मैं आईआईटी पढ़ता था तो एक वहाँ पे मुहावरा चलता था, यहाँ बहुत सारे आईआईटी वाले हैं वो जानते होंगे, हमारे साथ के हमारे पहले वाले होंगे
2: जी.
3: एक मुहावरा चलता था कि कानपुर ऐसा बेढब शहर है
2: अच्छा
3: जहाँ पे फूल बाग में फूल नहीं है.
2: अच्छा, बेढब शहर कहते थे.
3: हाँ, जहाँ फूल बाग में फूल नहीं है.
2: अच्छा.
3: और घंटाघर में घंटा नहीं है.
2: अरे वाह.
3: और मोती झील में पानी नहीं है.
2: और आपको वो बात खटक गई.
3: मैंने सोचा कि जब मैं यहाँ पे चाहे एक साल रहूँ या दो साल रहूँ तीन साल रहूं, हम लोग को पक्का तो रहता नहीं कब तक रहेंगे
2: जी,
3: लेकिन जब तक मैं रहूँ तब तक इस कहानी को तो मैं खत्म ही कर दूंगा.
2: अरे वाह.
3: और देखो उसमें मैंने मन में अपने ठान लिया
2: जी
3: और भगवान ने मुझे मौका दिया.
2: अच्छा.
3: आज फूल बाग में फूल ही फूल है. वहाँ पे देखिए क्या किया मैंने, बहुत सारी चीज़ें तो डिटेल में नहीं बता सकता. जैसे कि वहाँ पे उत्तर प्रदेश का एक म्यूजियम कानपुर का म्यूजियम बना दिया
2: जी,
3: जिससे कि वहाँ पे फूल लगे. लेकिन आज वहाँ पे मेट्रो, फिर भारत सरकार में सचिव के रूप में जब मुझे मौका मिला और यहाँ मेट्रो बन गया तो फूल ही फूल फूलबाग के पास हो गया.
2: अच्छा.
3: घंटाघर में न केवल घंटा लगवाया
2: जी,
3: वहाँ पे नीचे पुलिस की चौकी बनाई, वहाँ आसपास के पूरे इलाके में जो कब्जा था लोगों का वो सब खाली कराया
2: जी,
3: बल्कि आज वहाँ झकरकट्टी का जो बस स्टैंड है
2: जी
3: उसके लिए मैंने शुरुआत की. मैंने सोचा कि वहाँ पे जब हम लोग आते थे पकेटमारी बहुत हो जाती थी.
2: अच्छा.
3: जब हम लोग छोटे बच्चे थे आते थे आईटी पढ़ने के लिए, इतना भीड़ रहता था, बस का पूरी लगी रहती थी, कौन पकेट मार दे ठिकाना नहीं है.
2: अच्छा.
3: तो हमने सोचा था कि बस को हटा के कहीं और ले जाओ. और झकरकट्टी का जो जगह था वो कभी राख की मंडी होती थी.
2: अच्छा.
3: रेलवे डिपार्टमेंट से मैंने उस राख की मंडी को बार्टर किया, एक उनको दूसरी जगह दे दी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बगल में
2: जी.
3: और वहाँ पे आज इतना बड़ा बस स्टैंड बना है जहाँ पे लोगों की सुविधा हो गई है.
2: आपको
3: और
2: बताएं कि
3: तीसरा जो पानी पीने का जो कमाल का था, लोगों से पूछा कि भाई झील में पानी कहाँ से आता. लोग कहते हैं ऊपर से पानी जो भगवान ने देते वही पानी आता. मुझे विश्वास नहीं था.
2: अच्छा.
3: मुझे एक गजेटियर में मिला कि वो गंगा जी का जो पानी है जाता था क्या कहते हैं बेना झावर कहते हैं, बेना झावर में वाटर बर्स को, उस पानी का ये इंटरमीडिएट पॉन्ड है.
2: अच्छा.
3: मैंने इसको जो है पानी को साफ करने के लिए ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन पॉन्ड है
2: जी जी,
3: उस पूरी नहर को मैंने साफ कराया.
2: अच्छा.
3: उसको उस जमाने में 30 लाख रुपए जल निगम को मैंने दिया था अपने इससे जो है विकास प्राधिकरण की तरफ से
2: जी.
3: और आज उस झील में लोग नाव चलाते हैं. मैंने हमारे समय जब पानी आया था लगा था जैसे कि यूरेका मूवमेंट मेरे लिए था.
2: हाँ,
3: जैसे आर्किमिडीज को यूरेका मिल गया, मैंने जब पानी मिला तो मुझे लगा क्या कमाल की चीज होगी. और उससे कानपुर में पानी का जो बंद हो गया था पानी की सुविधा बढ़ गई.
2: क्या बात.
3: ऐसे तो बहुत कुछ काम करने का मौका मिला, लेकिन ये एक बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट वाक्य था जो की एक बच्चे के मन में, मैंने अब सोचा कि आईटी में पढ़ने जाता बच्चे के मन में भरा हुआ था, उस चीज़ को मैंने साफ कर दिया.
2: बहुत बढ़िया. आपको बता दें बहुत सारे हमारे श्रोतागण जो है वो कानपुर से हैं, तो उनसे अनुरोध करेंगे कि जरूर जाएं तो ये फूलबाग और क्या बस
3: मोती झील में तो इतना बड़ा म्यूजिकल फाउंटेन मैंने कानपुर, मैंने उसमें मैं आगरा में कलेक्टर हुआ करता था उसके पहले
2: जी,
3: वहाँ एक म्यूजिकल फाउंटेन में लगभग तय कर लिया था, सारी चीज़ फाइनल हो गई थी तब तक मेरा ट्रांसफर हो गया.
2: अच्छा.
3: उसके बाद उस म्यूजिकल फाउंटेन को मोती झील लगाया और आज वो जगह ऐसी है जो कि उस समय लोगों ने उसके अपोजिशन किया जब मैं टिकट लगाया था
2: जी,
3: मैंने कहा फ्री में कोई एंट्री नहीं दूंगा.
2: हाँ.
3: लोगों ने बड़ा अपोजिशन किया, सभासद लोगों ने काली पट्टी लगा करके वहां पे आए थे.
2: अच्छा.
3: लेकिन 2 साल के भीतर भीतर पूरा पैसा वापस हो गया और आज भी मैंने 1998 में मैंने उसको चालू कराया और आज भी वो मोती झील का म्यूजिकल फाउंटेन लोग तमाम सारे कार्यक्रम कराने के लिए जाते हैं, पब्लिक में बहुत पॉपुलर है।
2: बहुत ही अच्छी बात सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और कानपुर वालों को तो और भी अच्छा लग रहा होगा। तो अगला सवाल मेरा ये है कि दिल्ली में अपने आपने जो है वो सामान्य नागरिक जैसे अनुभव से क्या आपने लोगों के लाभ के लिए कोई कार्य किया हो, उसे बताइए।
3: ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन मैं आपको एक अगेन ऐसा ही एक अनुभव की बात करता हूँ।
2: जी
3: मैं 3 साल के लिए जो हम लोग को कूलिंग ऑफ होता है भारत सरकार में, आप एक साथ 7 साल से ज़्यादा नहीं रह सकते, तो मैं भारत सरकार कूलिंग ऑफ के लिए मैं पहले डायरेक्टर था, ज्वाइंट सेक्रेटरी था, फिर CVO था एयरपोर्ट अथॉरिटी, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश चला गया। और जब हम उत्तर प्रदेश चले गए तो हम सरकारी मकान नहीं रह सकते थे, तो मैं अपने बच्चों के लिए, बच्चे मेरे पढ़ रहे थे, बिटिया और बेटा पढ़ रहे थे, वाइफ भी मेरी दिल्ली में काम कर रही थी, तो मैं उनके लिए एक वसंत कुंज में एक मकान लिया, किराए पर मकान लिया। जब वसंत कुंज में रहते थे तो वहाँ पे मुझे एक दो चीज़ के अनुभव हुए
2: जी।
3: एक तो वो DDA के बनाए हुए मकान थे, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के, 4 मंजिल के मकान थे और मैं 4th मंजिल पे मुझे मकान मिला। सीढ़ियाँ इतनी अटपटी थी कि वहाँ पे चढ़ने बड़ी तकलीफ होती थी
2: जी।
3: बहुत लोग मुझसे इसलिए नहीं मिलने आते थे, जब मैं कभी कभी आता था तो मिलने इसलिए नहीं आते थे कि सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकते थे, मुझे पार्क में उनसे मिलना होता था
2: जी।
3: यहाँ तक कि मेरे सास ससुर भी वहाँ पे चढ़ने में लोगों को तकलीफ होती थी, बूढ़े लोग थे उनको चढ़ने में तकलीफ होती थी
2: जी।
3: मैं दूसरा चीज़ अनुभव किया कि जब मैं कभी कभी आता वहाँ पे जाके, मैं मुख्यमंत्री का प्रमुख सचिव बन गया।
2: अच्छा।
3: लखनऊ में मायावती जी उसमें मुख्यमंत्री होती थी, वो मुझे बहुत पसंद करती थी, मैं उनके साथ प्रमुख सचिव बन गया
2: जी।
3: कभी कभी मैं दिल्ली आऊँ तो दिल्ली एयरपोर्ट से लेके बसंत कुंज पहुँचने में, जो कि डिस्टेंस वाइज बहुत नहीं है
2: जी,
3: लेकिन 1.5 घंटे लग जाते थे, क्योंकि महिपालपुर का अगर किसी को याद होगा, महिपालपुर में बहुत तगड़ा जाम लगा करता था
2: जी।
3: मेरे मन में आया कि समस्या का निदान होना चाहिए, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं था
2: जी।
3: लेकिन भगवान ने मौका दिया, 2014 में मैं एडिशनल सेक्रेटरी बन गया अर्बन डेवलपमेंट का
2: जी,
3: और उसमें ये दोनों समस्या को परमानेंट निदान कर दिया
2: जी।
3: एक पॉलिसी बनाई, जितने सारे DDA के मकान थे, आज DDA के करीब 14 कॉलोनीज हैं बनाए हुए
2: जी।
3: हर कॉलोनी में लोगों ने अपने खर्चे से वहाँ पे लिफ्ट लगा लिया। जिस फ्लैट में मैं रहता था उस फ्लैट में भी अब लिफ्ट लग गई है।
2: अच्छा।
3: अब आप कहीं भी, मतलब करीब 70-80% मुझे खुशी होती है, मैं कहीं जाता हूँ DDA के फ्लैट में जाता हूँ और वहाँ लोग कहते हैं कि साहब देखिए कितना अच्छा हो गया लिफ्ट लगे, तो मैं उनको बताता नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो है इसके पीछे मेरी वो सोच थी जो पॉलिसी बनाई, उस पॉलिसी के तहत ये सारा सारा बन गया। दूसरा महिपालपुर का जो है, एक हमारे अर्बन डेवलपमेंट का फंड हुआ करता था जो कि यूज नहीं होता था
2: जी,
3: ये मैंने देखा और उसके बाद इस पर पॉलिसी बनाई। पॉलिसी बना करके उस फंड से बहुत सारा काम दिल्ली में मैंने कराया है, जिसमें एक काम ये भी महिपालपुर का, आज आप जाकर के देखें कि एयरपोर्ट से एरो सिटी की तरफ से डायरेक्टली आपका अंडरग्राउंड अंडरपास भी है, फ्लाईओवर भी है, इस तरह से बनाओ कि पूरा एक्सप्रेसवे टाइप का हो गया, मैंने कहीं से कहीं आप जो है, मैंने आप गुड़गांव की तरफ से आप आ रहे हो, आप महिपालपुर से वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हो, वसंत विहार की तरफ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको कहीं रुकने की जरूरत नहीं है, तो आप 5 मिनट के भीतर भीतर आप क्रॉस कर जाते हैं,
2: तो पूरी कनेक्टिविटी हो गई है।
3: और इसके ऊपर वही अर्बन डेवलपमेंट फंड से मैंने फंडिंग की
2: जी।
3: और आपको ये आश्चर्य होगा जानकर कि कम से कम 10 बार जब मैंने CPWDC इसको अपने सामने, हर बार उनसे मैं सिमुलेट करके उसको देखता था कि कब हो पाएगा कब हो पाएगा, जब मैं फाइनली संतुष्ट हो गया उसको सेंक्शन दिया और ये कहा कि 2 साल के भीतर भीतर बन जाना चाहिए, और 2 साल से कम पीरियड में वो बन करके तैयार हुआ, क्योंकि मुझे डर था कि 3 साल के बाद मैं कहीं और चला जाऊं, वो तो मेरा सौभाग्य था प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुझे आगे भी उसी मिनिस्ट्री में काम करने का मौका दिया, अदरवाइज मैं तो ये पक्का कर गया था कि एज एडिशनल सेक्रेटरी इसको उद्घाटन करा के जाऊँगा
2: जी। जब आपने ये बात कही है अर्बन डेवलपमेंट की, तो देखिए मोदी जी ने जितना काम भारत के ट्रांसफॉर्मेशन में किया है वो तो जो है गिनना और कहना जो है असंभव सी चीज़ है, जितना उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे ग्रुप में आप भी मोदी जी से कम नहीं हैं, हमें ऐसा लगता है जितना आपने काम किया है असंभव, तो इसका क्या राज है कि आप इतना काम कर पाए, इसके पीछे क्या आपकी कर्तव्य निष्ठा रही है या आपकी अडिगता या आपका देश सेवा भाव रहा है, कैसे आप इतना कुछ कर पाए, क्योंकि इतना आसान नहीं होता है पब्लिक सेक्टर में काम करना और काम निकलवाना लोगों से, यूँ कहिए तो।
3: देखिए 2-3 चीज़ कहेंगे, एक तो मैं कहूँगा मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सही समय पे सही मौके मिले
2: जी, ईश्वर कृपा रही,
3: भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी मुझे ऊपर की, जैसे कि देश का पार्लियामेंट बनाने का था, तो पहले से बहुत समय से माहौल चल रहा था बनाने का
2: जी।
3: मुझे मौका मिला और हमारे देश में इतने हमारे प्रधानमंत्री जी जो इतने मैंने देशभक्त प्रधानमंत्री और जो कि देश के प्रति इतना ज़्यादा उनकी भाव है कि देश को कैसे एक दुनिया के देशों में सबसे ऊपर ले जाएंगे
2: जी।
3: तो उनके उस भाव का उनका आशीर्वाद मिला
2: जी।
3: नहीं तो अगर मैं चाहे सोचता भी तो नहीं कर सकता था, संभव नहीं था। तो मैं कहूँगा कि एक तो ईश्वर का बड़ी कृपा थी, दूसरा ऐसा मुझे माहौल मिल गया, तीसरा एक चीज मैंने हमेशा से बांध रखा जो हमें पिताजी से मिला
2: जी,
3: कि कुछ भी समस्या का कोई समस्या अगर भगवान देते हैं तो उसका समाधान भी देते हैं
2: जी।
3: तुम्हें बस सोचने की जरूरत है, तुम्हें थोड़ा सा परिश्रम करने की जरूरत है
2: जी।
3: और कभी भी ऐसा कुछ आया जैसे कि पार्लियामेंट ही बनाने की बात आई, इतने सारे लोग उसके खिलाफत में चले गए थे।
2: अच्छा।
3: नौ नौ PIL थे सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, NGT में, और उसको सबको मैंने उस PIL को बैठ के बहुत लंबी बहुत परिश्रम करना पड़ा
2: जी।
3: लेकिन उसको सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट के सामने सारी स्थिति रखी और सुप्रीम कोर्ट ने सारा का सारा डिसमिस कर दिया। आपको ये जान करके ये बात भी खुशी होगी कि जब पार्लियामेंट का काम चल रहा था
2: जी,
3: ये हमारे सेंट्रल विस्टा का जो आज कर्तव्य पथ है, कर्तव्य भवन से काम चल रहा था
2: जी,
3: उस समय कुछ लोग हाईकोर्ट चले गए ये कह करके कोविड हो रहा है, और कोविड में हर आदमी तो मोदी जी के नाम पे जाता है, क्योंकि देश के जो है हमने देखा कि लोग अच्छा काम करने नहीं देना चाहते
2: जी।
3: तो वो उसको जो है कि मोदी जी लोगों का जान मारना चाहते हैं, इसके लिए इसका काम चलाया जा रहा है, कोविड चल रहा है। मैंने अर्बन सेक्रेटरी था, मैं पूरे देश में क्या काम चल रहा है सब कुछ मुझे जानकारी थी। मैंने जब हाईकोर्ट के सामने सारी बात रखी कि इतने सारे हमारे काम चल रहे हैं और जगह से कोई मतलब नहीं, और आप केवल इस काम को, जबकि हमने बताया कि क्या क्या हम मेजर्स ले रहे हैं
2: जी,
3: जिससे कि पोल्यूशन न होने पाए, जिससे कि कोविड में किसी को इन्फेक्शन न होने पाए, जिससे कि अगर कुछ होता है तो हम उसका तुरंत इलाज करें, एक एक चीज बहुत डिटेल में मैंने हाईकोर्ट सामने रखी।
2: तो बड़ी तैयारी करनी।
3: और हाईकोर्ट ने 3 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी, ऐसे लोग जो कि बड़े नामचीन लोग हैं समाज में, इनका बड़ा बड़ा नाम है, और ये लोग हाईकोर्ट में किसलिए कहते हैं कि काम बंद हो जाए,
2: क्या
3: उनका इंटरेस्ट है कि काम बंद हो जाए, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए